0: क्लासिक टेक को 16th एनिवर्सरी ऑफर जति में चाहियो तेती में पाइयो बजट र पैकेज तपाईको रोजाइको अब इंटरनेट टीवी र वाईफाई 6 राउटर पनि त्यतिमै पाइन्छ क्लासिक टेक को कुनै पनि प्लान खरीदमा हरेक हप्ता 3 जनालाई 3 महिना इन्टरनेट बोनस र मासिक 1 जनालाई रु 12,000 को इन्टरनेट बोनस सम्पर्क 9801004477 क्लासिक टेक जतिमा चाहियो त्यतिमा पाइयो
1: साली नदी को शिर
2: मणि चूड को काख
1: स्वच्छ सुंदर र स्निग्ध प्रकृति
2: शांति र आनंद को अनुभूति
1: भीड़भाड़ बाट टाड़ा
2: शहर बाट नजिकै
1: तपाईको स्वागत र आतिथ्य का लागि सधैं तत्पर
2: झुले अर्गानिक फार्म रिजोर्ट
3: विस्तृत जानकारी का लागि फोन नंबर 9861956661 र 9841 29 54 81 वेबसाइट झूले.com.np